सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो से जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसे।

मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करे विभूत किंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत।

सुखी एक एक की पीर पहचान है घट घट के पट पट की जान है जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत दे कर सब हूं जेते

ऐं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संग्रो दुष्ट जेते उठ बतुत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी परे।

0: सबसे पहले जो मिलने वाला पैगाम है सना काना, थर्सडे की ब्लेसिंग्स आपने भेजी हैं, बहुत शुक्रिया। और कौन?
1: नसीहत करने वाला कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वही हकीकी है।
0: अच्छा, ये जो स्पीड आपकी बहुत ज्यादा हो गई है, समय इसको करते हैं कुछ, और जब तक वो होता है हम आगे बढ़ते हैं। और आगे किसका पैगाम है? प्यार अली भाटिया का। उससे पहले अमीर अली राणा जी। अमीर अली राणा कहते हैं कि देखो, नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, तुझे देखा है मैंने उस नज़र से जिस नज़र से तुझे किसी की नज़र ना लगे। क्या बात है नज़र। एमएल विश्वकर्मा, आपने कहा है मुझे पता है आप क्या बताने वाले हैं और किस मुल्क के राष्ट्रपति की बात है। जी जी, आपने सही फरमाया है, लेकिन पहले आपका क्वोट है। आपने कहा है कि देखो, ये जो फीफा वर्ल्ड कप सम फुटबॉल का मुकाबला, जो शानदार आलमी मुकाबला हो रहा है, इसमें कितना खर्च होता है, कितनी आमदन होती है, क्या होता है, इनाम कितने मिलते हैं। कहते हैं टोटल पूरा जो समिन कारोबार की जो कदर है वो 700 मिलियन डॉलर है, US डॉलर 700 मिलियन। जब कोई टीम जीतेगी उसको 55 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, दूसरी 39 होंगे 39 मिलियन US डॉलर्स, तीसरी टीम को 29 और चौथी को 19। चलिए ठीक है। इन एडिशन ऑल 46 पार्टिसिपेटिंग टीम्स, 46 टीमें इसमें भाग ले रही हैं दुनिया की फुटबॉल के मुकाबले में, वर्ल्ड कप में। तो इन एडिशन ऑल ऑफ देम, ऑल द 46 पार्टिसिपेंट विल गेट $10 मिलियन एज कन्वेयंस यहां से वहां जाने के लिए, $10 मिलियन एक एक टीम को। वाह क्या बात है, ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन सुबह सुबह आपने दे दी एमएल विश्वकर्मा, थैंक यू सो मच इंडीड। और क्या किसी ने बनाया है, चाइना बिल्ट अ $4 बिलियन एयरपोर्ट ऑन 3,000 pillars ड्रिवन इनटू द सी बेड बीनीथ द ओशन। तो ये कैसी कैसी ईजादें हैं समी, कैसी कैसी तामीरात हैं। चंद्रिका वसंत गोसाई, आप साथ हैं हमारे, बड़ी अच्छी बात है। मिसेस कपिला ढिंगरा, वेलकम। और यहाँ पर है रंजन विनोद, लंदन में डियर फ्रेंड्स को याद किया है, कितना मैं एंजॉय कर रही हूँ, और आप जब गाने लगाती हैं इतनी इतनी देर के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कमाल की बात है।
2: ये गाना फिल्म सगाई का है जिसको मोहम्मद रफी और आसिफ हुसैन ने गाया है और जिसको
0: ये जरा ठीक करती हूँ। अच्छा समीन, अगला गाना कौन सा है? आशा और रफी।

0: और समझ अगर आपसे कोई रूठ जाए तो क्या करना है, वो मैं वो तो नहीं बता सकती, लेकिन जब दो ममालिक जो दो देश हैं एक दूसरे से रूठ जाते हैं, जी हाँ, फिर समय तनाव बढ़ता है, खिंचातानी होती है, लफ्जी जंग शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही दो देशों के दरमियान हुआ, तो उन्होंने कैसे ये किया है, हालात बेहतर कर रहे हैं, किस तरह का तोहफा दिया है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये नॉर्मल स्पीड पर आ जाए।
1: प्रवीण जी, ना ये जमी थे, ये गाना फिल्म सगाई का है जिसको मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है और जिसको राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और जिसकी धुन रवि ने बनाई है। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया
0: जी। जब याद है उनकी आवाज़ कैसे भाग रही थी, अब मैंने ठीक कर लिया है।
2: नसीहत करने वाला कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वो ही हकीकी खैर ख्वाह होता है। झूठी तारीफ करने वाला मीठा जरूर लगता है, मगर अक्सर धोखा दे जाता है। इसीलिए दोस्तों, नियत अगर नेक हो तो अल्लाह कभी गिरने नहीं देता, ना किसी की नजरों में ना किसी के कदमों में। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, सलमा अहमद किसुमो।
0: गिरने नहीं देता ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में, वाह सलमा, दैट वाज गुड। और अब देखते हैं कि क्या किया है। यहाँ पर है मैसेज है जी, मिसेस ढिंगरा का था। और थैंक यू, गुड मॉर्निंग, आज की थॉट रूपल की है, वन लाइन, बड़ा नटकट है कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। अच्छा, ये मुझे भी याद है, ये बड़ा अच्छा है भजन टाइप, मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, बड़ा नटकट है, कमाल का लिखा हुआ है। अच्छा, कृष्ण कन्हैया के बारे में, उनके बाद चलते हैं शोभना और दिनेश के पास, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का।
3: इट्स 10:19. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details. Team.
4: रोज साडे नाल जुड़ो गुरबानी प्रोग्राम अते गुरमुख विचारां वास्ते सवेरे 6 बजे तो लैके 7 बजे तक। स्टार्ट योर डे विद पीस एंड डिवोशन। द ईस्ट अफ्रीकन रामगढ़िया बोर्ड ब्रिंग्स टू यू रिलीजियस प्रेयर्स। ट्यून इन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन जर्नी एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 6 AM टू 7 AM ऑन ईस्ट FM, ब्रॉट टू यू बाय द ईस्ट अफ्रीकन राम।

समझाना अफसाना. अब चलते हैं शोभना और दिनेश के पास. वो कहते हैं पता क्या, फिल योर कप विद पीस ओवर प्रेशर, होप ओवर फियर, ग्रेटिट्यूड ओवर कंप्लेंट्स, जॉय ओवर वरीज, बिकॉज लाइफ टेस्ट्स एग्जैक्टली हाउ यू ब्रू इट. बहुत अच्छे, बिल्कुल सही दिनेश एंड शोभना. और आज टुडे इन हिस्ट्री, इन 1990 पिलग्रिम्स are trampled to death. How many? 1,426 pilgrims are trampled to death after a panic in a tunnel in Makkah, Saudi Arabia. I remember it so well. Some Saudi Arab mein jahan haji ikatthe hue hue the, aap kehte hain yatra, lekin hum kehte hain haj Makkah mein, to ye bhagdad ho gayi thi, stampede sa ho gaya tha, 1400 se zyada yatri mare gaye the. और यासर कहते हैं 1972 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो साइंड द शिमला एग्रीमेंट इन हिमाचल प्रदेश. बहुत बड़ा समझौता था, मुआहिदा था, लेकिन फिर क्या हुआ सामिन? कुछ भी नहीं. द ट्रीटी फॉर्मली आउटलाइंड प्रिंसिपल्स टू गवर्न बायलैटरल रिलेशंस फॉलोइंग द 71 वॉर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश. अंडर द पैक्ट इंडिया एग्री टू रिलीज 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स. समिन 93,000 सिपाही, पाकिस्तानी सिपाही बांग्लादेश के पास थे तब, कैदी उन्होंने कैद कर रखा था. फिर समझौता करवा के उनकी उनको वापस पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन बांग्लादेश चला गया था पाकिस्तान के हाथों से. यासर बहुत शुक्रिया आपका. नाइस सॉन्ग तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, हाउ आर यू, नायला ने कहा है. गुड नायला, प्लीज प्ले फॉर मी सात समुंदर पार से. ओके लेट मी ट्राई. हालांकि रूपल का मैंने कोशिश किया है, ज़रा वक्त लग रहा है, पर ये जो आपका ना सात समंदर पार से, वो मैं सुना दूंगी.

0: जल्दी आ जाना और समिन ने जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रिपोर्ट अमेरिका में जारी हुई है, अमेरिका यूएसए में फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के माली जो हैं इनकशाफ हुआ है माली की, जिस सदर जो है अमेरिका का उसकी समय कदर क्या, उसकी आमदन क्या है। हैरी ट्रूमन हुआ करते थे ना अमेरिका के प्रेसिडेंट सदर थे, जब उन्होंने अपना पद छोड़ा उनकी मुद्दत ख़त्म हुई तो $113 पेंशन थी उनकी पर मंथ, 113। आज आप देखें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जब वो पहली बार आए पहले साल में उन्होंने $2.2 बिलियन कमाए थे, $1.4 बिलियन ये गए साल क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में, $635 मिलियन इनको रॉयल्टीज सिर्फ एक जगह से सेलिब्रेशन कॉइन्स से मिली, 2024 में $622 मिलियन और 2025 में चार गुना ज़्यादा हो गई इनकी आमदन। कहाँ से सब ये कारोबार करते हैं ना, पर लोगों ने अब कहा है, अमरीकी कह रहे हैं कि दिस इज़ प्रॉफिटिंग फ्रॉम प्रेसिडेंसी, यानी सदर होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, सदर ये कर रहे हैं, कहते हैं किसी और अमरीकी प्रेसिडेंट ने ये नहीं किया, इट इज़ अनमैच्ड। सो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि हमारे भारत की जो सदर हैं औरत मुर्मू, उनकी उनका तो कोई कारोबार नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो तनख्वाही देख लेते हैं, ₹5 लाख है, सिर्फ ₹5 लाख एक माह की।
1: Kenya's premier Asian mix,
2: East FM,
1: celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
2: East FM,
1: Kenya's premier
2: Asian mix.
3: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: A few weeks ago, we sold 100 tickets for 100 bob. Told people nothing. They trusted us anyway. Turns out, they were right too. On Saturday, July 25th, experience the Agave Affair. Curated tasting, great music, and great company. All happening at KICC. One night, bold flavors, unforgettable memories. Don't watch it on everyone's stories. Be in it. Alibaba tickets are now live at ticketier2.com. The Agave Affair.
1: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
2: East FM.
1: East FM.
3: East FM. Kenya's premier Asian mix.

0: और अब चलते हैं, देखते हैं कि प्यार अली भाटिया ने कौन से गाने की ये इन्फॉर्मेशन।
1: पप्पा जल्दी आ जाना, ये गाना फिल्म तकदीर का है, 1967 की मूवी है, जिसको सुलक्षणा पंडित और लता मंगेशकर ने गाया है, और जिसको आनंद बख्शी ने लिखा है, और जिसकी धुन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने बनाई है। ये गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया।
0: और शुक्रिया करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ फरमाइशें हैं जो मैं नहीं कर सकूंगी पूरी, क्योंकि सामने एक्चुअली तो मैं सारा तय करके आती हूँ, मेरी लिस्ट बनी होती है, एक आधी फरमाइश हो तो मैं कर देती हूँ, लेकिन अभी इसको फरमाइशी प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। और एमएल विश्वकर्मा ने भी फिल्म तकदीर की बात की है, भारत भूषण थे फरीदा जलाल, जलाल आगा भी थे, जॉनी वॉकर और सुभाष घई। अच्छा, थैंक यू आपका एमएल विश्वकर्मा। सोनल मोदा को बहुत अच्छा लगा है जहां डाल डाल पर, क्योंकि सदर जो हैं इंडिया की उनकी बात हो रही थी, मैंने सोचा आपका देशभक्ति का गाना सुना दूं। रसिला, ये भारत देश है मेरा, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन। रसिला, अच्छी बात है आपने एंजॉय भी किया है। और परमिंदर भट्टी, जगदीप नांद्रा फ्रॉम लंदन, परविंदर भट्टी यहाँ से, बहुत शुक्रिया। कृष्ण सरोय ने कहा है कि जहाँ है ये चाइल्ड बर्थ भारत का समन, वहाँ पर कहते बच्चे नए मतलब के नौ मौलूद बच्चे बहुत कम रह गए, चाइल्ड बर्थ का रेट 5.2 था। कृष्ण कहते हैं अब 1.9 हो गया, जबकि दुनिया का बर्थ रेट 2.2 है, मतलब कि इंडिया में बर्थ रेट बच्चों की पैदाइश का रेट बहुत कम हो गया। कहते हैं इलोन मस्क के 14 बच्चे हैं, ये बात आप तस्दीक कर दें मुझे हमारे लिसनर्स के, वाकई कभी ये बात मैंने पढ़ी नहीं है और ना सुनी है। इतना ये पता है कि एक आधा बच्चा भारतीय निजात का है।

0: मधुबरी आवाज हेमंत की। सबसे पहले किसने जवाब दिया? कामिनी। वेल डन कामिनी, आपने इंग्लिश का भी दे दिया और साथ ही आपने हिंदी का दिया है। मुझे लगता है हिंदी और गुजराती में एक सा होगा, दोनों भाषाओं में वो एक ही होगा। और दूसरे लिसनर कौन है? आरफा फ्रॉम ओंगाटा रुंगाई, आपने सही दिया है, पंजाबी में भी दिया है, वो मैं थोड़ी देर के बाद। कृष्ण सरोय ने तीनों भाषाओं में दिए हैं, डिफरेंट वंस। ओके, अब सना काना, जी जी उर्दू में करेक्ट है। और नायला, नायला ने कहा है जो, वो भी है बिल्कुल सही, यही पंजाबी में भी है। मंजू डगर, दोनों हिंदी और उर्दू करेक्ट। रितु, हाँ जी ये दोनों रितु आपके करेक्ट हैं। और जतिंदर,
1: हेलो प्रिय जी, ओ एम जी द वर्ड ने ओ माय गॉड, आंसर आ ओ माय गॉड, थैंक यू जी।
0: ओके जतिंदर। ममता,

0: और हिंदी में आपने दे दिया है करेक्ट है बिल्कुल सही है मिस्टर मेहता इन एम्बू मतलब किसी का गलत हुआ ही नहीं अभी तक ओ क्योंकि गॉड का नाम है ना शीतल शाह वेल डन शीतल बीना पटेल करेक्ट बीना आपका और अमीर अली राणा राइट समझ थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन वैसे सभी एक ही हैं और प्रणी टुडेज ट्रांसलेशन ये भी बता दें कहते हैं कि लिसनर से पूछें वाह क्या बात है इसको भी ट्रांसलेट कर लें वाह क्या बात है ओके ये अमीर अली राणा ने कहा है बट आई मिस द क्वेश्चन ओके बिल्कुल रसीला शाह करेक्ट है फिर चलते हैं शमीम सही मतलब समझ क्या है आंसर हाय रब्बा ए मेरे मालिक हाय खुदा हाय यही है हे भगवान यही है और सोनल मोदा ने भी यही कहा है और शीतल और शीला शैलेश और शीला बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर है मंजुला विश्वकर
1: अरविंद जी ओ एम जी का मतलब है ओ माई गॉड और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हे भगवान
0: हे भगवान यही है आंसर क्या बात है समन किशोर का बेहतरीन गाया हुआ

0: उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, ब्यूटिफुली सॉन्ग। अब समिन जो कहना था, हे भगवान, हे मौला, ए खुदा, हे रब्बा। और दिनेश पोपट कहते हैं कि गुजराती में हे भगवान है। बिल्कुल सिड कप यूके से, मिसेस धंजल।
1: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग। मिस्टर धंजल है प्रवीण जी, आपने पूछा है ओ माई गॉड मीन्स इसमें आश्चर्य है, सो पंजाबी में बोलेंगे हाय मेरे रब्बा और हिंदी में बोलेंगे हे भगवान। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।
0: हाय रब्बा, हाँ बिल्कुल, उसमें सरप्राइज का एलिमेंट भी है। वाह बहुत अच्छे। और आपके बाद आई हैं सना, क्या बात है का आंसर होगा वंडरफुल, ब्रावो, वेल डन। क्या बात है डजंट लिटरली वेल डन, मुझे लगता है कि इसका कोई और ट्रांसलेशन बेहतर हो सकती है इसकी। रितु गुप्ता, जी बी यू का मतलब क्या है? जी बी यू, ओके रितु का भी आंसर दें, जी बी यू क्या है? बिंदु फ्रॉम जयपुर, नमस्कार। और हिंदी में है हे भगवान, इसने तो तंग कर रखा है, ये कह सकते हैं बिंदु। और रसीला, परवीन जी आई वॉन्टेड टू हियर सिंस सो मैनी डेज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग किशोर का, एंड लुक हाउ ही हैज सांग इट विद सो मच इमोशन, लगते ही नहीं है कि उन्होंने गाया है, हैं रसीला? बिल्कुल ठीक
2: प्रवीण जी, आपको व सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। तो मेरा एक रीडल है, तो ये लिसनर से पूछिए कि पांच अक्षर का मेरा नाम, पांच अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक सम्मान, अगर अर्थ निकालो तो नई जिंदगी देना मेरा काम। फिर रिपीट करी हूं, पांच अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक सम्मान, अगर अर्थ निकालो तो नई जिंदगी देना मेरा काम, क्या है? थैंक यू, रेखा वालिया।
0: चलिए बताइए, नई जिंदगी देना मेरा काम, ओके फाइव लेटर्स हैं, फाइव अक्षर। हे भगवान, जयश्री ने ठीक दिया है आंसर। और रूपल, जीबीयू का मतलब बता दिया है आपने। सोनल, आपने भी बताया जीबीयू। अच्छा, मैंने कभी यूज ही नहीं किया जीबीयू, मैं तो लिखती हूँ फुल। रसिला, आपने कहा है जीबीयू मींस गाइडेड बॉम्ब यूनिट। जीबीयू तो गाइडेड बॉम्ब यूनिट है, ये आप किसी को कैसे भेज सकते हैं जीबीयू? गाइडेड बॉम्ब यूनिट, वाह। लेकिन मुझे लगता है ये नहीं है, वो दूसरों ने जो भेजा है ना वही होगा।

0: और रसिला आपने कहा है ग्लोबल बिजनेस यूनिट GBU या फिर वो गाइडेड बॉम्ब भी था, नहीं ये नहीं है, ये एक्चुअली मोबाइल की लैंग्वेज की बात हो रही है रसिला जी. आई एम थिंकिंग व्हाट अदर्स आर थिंकिंग इट शुड बी GBU, लेकिन इसका मतलब क्या है? GBU का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं ना अल्कल्पना. ओके और जयश्री थैंक यू. रिडल का आंसर है ऑक्सीजन, रितु गुप्ता. ओके ये भी बता देंगी हमें रेखा बालिया. GBU मींस गॉड ब्लेस यू, सना ने कहा है ये करेक्ट है, गॉड ब्लेस यू बिल्कुल सही.
1: हेलो प्रवीण जी, प्रवीण जी अज बहुत खुश लग रही है, गाने की बरसात हो रही है, अच्छे तो अच्छे गाने आ रहे हैं, गुड म्यूजिक वाले. थैंक यू जी, खुश रहो. थैंक यू, बाय.
0: या खुशियाँ समिन, जब आप खुश होते हैं ना ये गाने सुनकर हमें बड़ी खुशी. और रनेजा नायर, गॉड ब्लेस यू है GBU, करेक्ट. सोनल मोदा, रेखा जी की रिडल का आंसर है हिंदी में, आई कैन नॉट रीड इट. और रूपल, रूपल कहती है द रिडल दैट रितु जी आस्ट एक्चुअली रेखा, दैट द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, फॉर एग्जांपल नयन, नयन. ओके पर ये नयन नहीं हो सकता. ओके मे बी.
2: हेलो, गुड मॉर्निंग, जय स्वामी नारायण, जय श्री कृष्ण, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो? पति पत्नी होई छे, पत्नी पत्नी होता है, तो पत्नी ने उसका हस्बैंड को बोला कि आज से मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, तो हस्बैंड ने बोला पत्नी बोलता है नहीं, मेरे को इज्जत से बुलाना, मेरे को बोलना धर्म पत्नी, मीन्स इज्जत हुई मेरी, तो कह कोई नहीं मैं इज्जत से बुलाऊंगा. तो आधा घंटे के बाद उसकी वाइफ का जो भाई होता है, मीन्स वो उसका साला, उसका फोन आता है उसकी सिस्टर पे, तो कह अपना जीजा जी किधर गए, तो उसकी पत्नी बोलती है ये तो मेरा फोन है, मेरा भाई का फोन है, उसके साथ बात करो. तो उसका बने भी बोलता है हेलो धर्मशाला कैसे हो, तो उसकी वाइफ बोलती है क्यों धर्मशाला कहा, तो बोलती है बोलता है मेरा तेरा भाई वो मेरा तो साला हुआ ना, तो धर्म मीन्स अपने जो धर्म होता है वो धर्म को धर्मशाला ही बोलता है ना, उसमें क्या है. उसकी वाइफ जो गुस्से में हो गई बोलता है अभी तुमको कुछ बोलना ही नहीं है. थैंक यू मनोहर पटेल, किसुमो
0: जी. अगर तुम धर्म पत्नी हो तो तुम्हारा भाई धर्मशाला है ना. ओके और यहाँ पर अमीर अली राणा, अ चांस ऑफ प्लेइंग अखियां संग अखियां. ओके नो आई हैव नो टाइम, लेकिन मैं कोशिश करूँगी. ओके बीना आपने कहा है GBU मीन्स गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया. और बिंदु ने कहा है नव जीवन आंसर है, नव जीवन, पर पांच अक्षर का उन्होंने कहा था कि मैं लेटर. और गॉड ब्लेस यू किसने कहा है? शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका. यस सर आपने कहा है GBU, भगवान आपकी भला, आपका भला करे. GBU इसको भी हिंदी में कह दें, भगवान आपका भला करे. वाह गुड. और गॉड ब्लेस यू रसीला ने कहा है, आशा भीमानी ने भी कहा है कि परवीन जी आंसर इज मलयालम, आशा भीमानी वो रेखा वालिया का शायद. सोनल आंसर इज नव जीवन. ओके रितु गुप्ता मालिया मालियम, मालियम है. ओके और God bless you answer diya hai Shailesh aur Sheila ne, bahut bahut meherbani.
3: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
5: This is the one that we all wait for. The one that transforms and upgrades your living room, kitchen, bedroom, your entire house without breaking the bank. The big annual sale at Tile and Carpet and Tuck. Tiles, flooring, fabrics, furniture, decor, roofing solutions, and many more.
6: With big discounts.
5: There's only one sale. The big annual sale. 15th June to 18th July at the Tile and Carpet and Tuck branches countrywide. Hurry while stocks last.
7: The Tile and Carpet annual sale. It's big.
3: East FM, Kenya's premier Asian mix.
8: No one plays more of the beats you dance to but East FM.
9: East FM,
8: Kenya's premier Asian mix.

0: और तंजानिया में हमारी लिसनर एंजॉय कर रही हैं गाने शनाज बट रोशन कांजी यहाँ पर. व्हाट अ गुड प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है. रितु, मलयालम आंसर है आपका. आपने कहा है कि रिडल मलयालम है. आई डोंट नो इफ इट इज, क्योंकि आंसर देखती हूँ.
1: रिडल का आंसर है नव जीवन. गुजराती और हिंदी में सेम रहेगा, अगर इंग्लिश में लिखोगे तो थोड़ा स्पेलिंग लंबा हो जाएगा. सोनल फ्रॉम मुंबासा.
0: बिल्कुल, सोनल फ्रॉम मुंबासा, अच्छा मैसेज है आपका. और आपने कहा नव जीवन ही आंसर है. अगर तो रेखा बता देती हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ कि आज का आंसर है. हाँ हाँ उन्होंने भेजा है, नव जीवन है आंसर. थैंक यू सोनल, यू आर राइट एंड ऑल द लिसनर्स हु सेड नव जीवन, बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, अगले सवाल का इंतज़ार कीजिएगा.

0: और कहते हैं बेटी बेटी ये फिल्म सरोजा देवी और सुनील दत्त के साथ बनी कमाल की फिल्म थी कृष्ण सर्वे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें आपने सुनी। और यहाँ पर है मंजू डगर, आपने कहा है कि आंसर है मंजुला विश्वकर्मा के सवाल का नवन नमन। और गगन आपने लिखा, अगर गगन को राइट से लेफ्ट पढ़ें तो फिर तो नगग बन जाएगा। सो आई डोंट नो, नमन और नवन हो सकता है। सलाम अलैकुम कहा है दर्शन सिंह लोटे, और कहते हैं आई एंजॉयड इन मलिंडी विद माय नेफ्यू विद माय पार्टनर। थैंक यू दर्शन सिंह लोटे। और आपने कहा है कि हम कितने मॉल्स पर गए थे, अब मेलबर्न से कर रहे हैं मैसेज, थैंक यू। दीपक वडगामा, आपने सही जवाब दे दिया, लेकिन आपने कहा है, उन्होंने कहा था फाइव लेटर्स। हाँ, आपके दूसरा है नयन, जो एक्चुअल वर्ड है वो भी नितिन है जो आंसर दिया है मंजुला विश्वकर्मा। और दीपक वडगामा ने दोनों नयन और नितिन दिए हैं, करेक्ट।
1: हेलो, सलाम परवीन जी। परवीन जी, बड़ा खूब कहा है बादशाह जफर जी ने, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में, इन हसरतों से कह दो कहीं और जाके बसें, इन हसरतों से कह दो कहीं और जाके बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबा, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागमा, ये तो गुलों के साथ पले हैं बहार में, बुलबुल बुलबुल को बागमा से ना सयाद से गिला, बुलबुल को बागमा ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसलें बहार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें तो बहुत जगह मिली बेमिसाल में, बहुत अब मुलाकात होगी कल, धन्यवाद परवीन जी।
0: थैंक यू अजय पाल, वो कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, उनको कब्र नहीं नसीब हुई थी भारत में, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शाह थे। और नितिन का आंसर करेक्ट है, शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आपने भी सही जवाब।
2: परवीन जी अस्सलाम वालेकुम, श्री मेहर फ्रॉम लंदन, व्हाट अ फैंटास्टिक सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स यू प्ले टुडे, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क।
0: Great, you appreciate it.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Kakamega Mambo VP. Guess who is coming to your hometown? It's the East FM and Radio Africa Roadshow on 10th July. It's the roadshow that gets everyone dancing, laughing, and partying all day as you meet and hang out with Radio Africa presenters. Prepare lots of ugali. Turn up with your Boda Boda crew. We'll come with the entertainment. Tucheze Isikuti. It's Radio Africa Kakamega Roadshow, July 10th. This will be epic.
5: Kenya's premier Asian mix.

0: आज प्ले फिनिश एफएम के नेस प्रमोशन मिक्स दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल और हम बात कर रहे हैं अबाउट द 90s गेम्स जो हम खेलते थे एंड राइट नाउ आजकल के बच्चे यू नो आई हैव ऑलवेज सेड दिस दैट यू नो व्हाट आई थिंक द टाइम्स आर टोटली डिफरेंट एंड वी हैव टू मूव विद द टाइम बट एक चीज ऐसी आई थिंक फॉर मी एट लीस्ट ग्रोइंग अप इन द 90s आई ऑलवेज थॉट दैट यू नो व्हाट प्लेइंग आउटसाइड वाज सो मच बेटर एंड एक ऐसी चीज थी हमारी कभी बैटरी डाउन नहीं होती थी We had energy throughout the day. So people think that we are talking about phones. Nahi, main phone ki baat nahi kar raha. I am talking about hamari khud ki battery. We used to have so much of energy. And aajkal ke kya hota hai ki agar phone ki battery kam ho jaye ya iPad ki ya computer ki ya laptop ki ya kuch bhi, if it comes down, then you have to put it on charge. Agar phone hai, to wait karna padta hai. Ek certain percentage pe aa jaye, then you can start playing again. सो आजकल के बच्चों में डू दे हैव द सेम एनर्जी दैट वी यूज टू हैव व्हेन वी वर ग्रोइंग अप शेयर योर थॉट्स विद मी ऑन 07011061106 एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज गोइंग टू बी योर ट्रांसलेट चैलेंज
1: इट्स 8:25
2: वी अनलॉक्ड गवा फॉर यू नाउ वी आर गिविंग यू अ फ्रंट रो सीट इनसाइड गवर्नमेंट इनसाइड द कैबिनेट इनसाइड द डिसीजन मेकिंग कमिटीज इनसाइड व्हाट्स अबाउट टू हैपन एंड व्हेन इट'ल हैपन इनसाइड द बिग अपॉर्चुनिटीज इनसाइड द टेंडर्स इनसाइड गवर्नमेंट जॉब्स Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
3: No one plays more of your Bollywood favorites. Buttiest FM, Kenya's premier Asian mix. What?

0: FM के लिए प्रीमियर एशियन मिक्स, दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल. एंड हम बात कर रहे थे अबाउट ग्रोइंग अप इन द 90s, एंड नॉट 90s रियली, बट ग्रोइंग अप द गेम्स वी यूज्ड टू प्ले एंड इन कंपैरिजन टू टुडेज गेम्स एंड द जनरेशन. एंड एक ऐसी चीज है जो 90s में, यू नो, आवर वी आल्सो हैड नोटिफिकेशंस. सो आवर्स वर नॉट फोन नोटिफिकेशंस, क्योंकि तब फोन थे ही नहीं. थे तो देयर वाज दोज ओल्ड फोन्स जहाँ पे कोई इंटरनेट विंटरनेट तो नहीं था, ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी. सो आवर नोटिफिकेशंस वर विसल्स फ्रॉम फ्रेंड्स आउटसाइड योर गेट कि भाई साहब हम पहुँच गए हैं, चलो जल्दी बाहर आओ. समवन शाउटिंग योर निकनेम, अ स्टोन हिटिंग योर विंडो, एंड योर मॉम कॉलिंग योर फुल नेम. One notification from mom and everybody logged out immediately. Mom ne agar bula le, if you're playing, you had to immediately rush. So, ek kya kehte hain hum? Aapka jab when you were growing up, what notification did you use? Hamara to simple tha. हमारे दोस्त आते थे, हम लोग दूसरे दोस्तों के घर पे जाते थे, एंड वी यूज टू शाउट देयर निकनेम्स और कॉल देम बाय द कोड नेम. एक कोड नेम भी होते थे जहाँ पे हम यूज करते थे, सो दैट पीपल कैन नॉट फाइंड आउट. शेयर योर थॉट्स विद मी ऑन 0701 106 106, एंड ट्रांसलेट चैलेंज इज ऑन गोइंग राइट नाउ. एंड मैंने आपको पूछा था विच इज दिस मूवी दैट आई एम लुकिंग फॉर टूडे. इट्स अ वन वर्ड मूवी इन हिंदी, एंड इट रिलीज इन द ईयर 1994. And it in English it sounds like this, Pawn, PAWN. Kaun si movie hai ye? This was this movie actually. It stars. Chalo clue de dete aapko, but a lot of our correct answers have already come in. And fastest finger first being Vimlesh. Vimlesh, you have given me the correct answer. Thank you so much for your answer. You have given me the correct answer. Fastest finger first. I've got Jayshi, who has given me the correct answer. So has Mr. Atul Shah. You have given me the correct answer. So has Sangeeta and Mr. Bipin. You have given me the correct answer as well. Final clue de deta hu aapko that this movie actually stars Nasiruddin Shah. Who played the antagonist? Akshay Kumar, Sunil Shetty and Raveena Tandon. Kaun si movie hai ye? Paresh Rawal, Gulshan Grover and Raza Murad also played a cameo in this movie. So did Sadashiv Amrapurkar. Kaun si movie hai ye? Pyada ko hum English, Hindi mein ya Sanskrit mein vagaira kya bolenge? कौन सी मूवी है ये? शेयर योर थॉट्स विद मी ऑन 0701. शेयर योर आंसर्स विद मी ऑन 0701 106 106.
1: योर फेवरेट्स फ्रॉम द 90s.
2: मेरा दिल भी कितना पागल है.
1: 2000s.
2: दिल डूबा.
1: And today, East FM, Kenya's premier Asian mix.